0: जाए कि तन होए
1: आत्मजापन ऋण संसार
0: जिनसे व्यातिम पयमन
1: नानक कहिए गुण निदान
0: गावे सुने मन वक्य भाव
1: दुख पर हस कल जाए
0: गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदां गुरुमुख विरस माए
1: गुरु ईश्वर गुरु गोरख परमा गुरु पर बाति माए
0: जय हो जाना आका नाही कह न कत न जाए।

0: तू सदा सलामत निरंकार,
1: असंख जाप असंख पाओ,
0: असंख पूजा असंख तपताओ,
1: असंख क्रांतमक वेद पाठ,
0: असंख चोग मुराय उदास,
1: असंख भगत गुण ज्ञान विचार,
0: असंख सती असंख दातार,
1: असंख सूरमो पाकसार।

0: सलामन निरंकार
1: असंख मूर्ख हंड खोर,
0: असंख जोर हरा मकोर
1: असंख अमर कर जाहे चोर,
0: असंख गल्ब हत्या कमाए
1: असंख पापी पाप कर जाहे,
0: असंख कुरियार कुरे फिराए
1: असंख मलेच्छ मल

0: सगस
1: ओर्क पत के वेरक हनक वात
0: सहस तारिक हंक तेवा सुंक एक दात
1: लेक हुए ता लेक आ लेक हुए वनास
0: नानक वादा आखिए आपे जाने आप
1: सल्ला

0: दातार,
1: पंध कलासी पाने हुए,
0: ओ राख न सके कोय,
1: जेका काय का आखण पाए,
0: ओ जाने जितिया मुकाय,
1: आपे चरने आपे ते,
0: आखे सेवे के
1: जिसन बख्शे सिफत सला,
0: नानक पाछाई पातिशाओ,
1: अमूल गुण अमूल व्यापार,
0: अमूल व्यापारी अमूल भंडार,
1: अमूल आवे अमूल ले चाहे,
0: अमूल बारी अमूल समय,
1: अमूल

0: चित्ते सोहन पंच पुरवान
1: नानी करम पवे निशान
0: कच पकाए होते पाए
1: नानके आ जपे चाय
0: धर्म खंड का ए हो तरम
1: ज्ञान कं का आको करम
0: केते पवन पनी वे संतर केते कान महेश
1: केते वर में करे करे रूप करम के वेश
0: केते अखनम भूमि मर केते केते धूप देश
1: केते ईशा सुर केते केते मंदल देश
0: केते बुर अगर बुर नाथ केते केते देवी वेश
1: केते देव दरन सुन केते केते रत समन्द
0: केते अखानी केते अबानी केते पात नरेंद
1: केते सुरति सब केते नानक अंत न अंत
0: ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड
1: तिते नाथ को ओतनंत
0: सरम खंड की बाणी रूप
1: तिते करी करिए बहुतनुप
0: ताकिया कला कतिया ना चाहे
1: जे को कहे कि छे पछताए
0: तिते करिए सरत मत मन बुद्ध
1: तिते करिए सरसदा की सुत
0: करम खंड की बाणी जोर
1: तिते होर न कोए होर
0: तित

पियास छाछित चित्ता पियास है कर पुंड चित्र मन आस है अभिवत बन सत ताप ताप विनाशन दुख नासना मिल प्रेम मन तन अंत गना सुन

सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। Inhale for Satnama.